0: Hi, it's Diane Stokes. You're listening to ACCC Community Radio 102.1 FM live from Tennant Creek.
1: तुमने बदला लिया है,
2: बदला भी लिया है और ये भी बताने आया है अब की बार मेरा माल पकड़वाएगा, हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा।
1: Son of a bitch.